एंड वेलकम बैक, आते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग. घर की हिंसा सिर्फ बड़ों को नहीं बल्कि बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है. ये बच्चों के पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट को सीरियस तौर पर ख़राब करती है. बच्चे कन्फ्यूज और हेल्पलेस फील करते हैं और कभी कभी वो भी वायलेंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके समझने लगते हैं. वायलेंस से कुछ नहीं सुलझता, ये सिर्फ परिवार को तोड़ती है. अपने और अपने बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार मत होने दो, अभी मदद लो. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2343-2255 पर. ऑलराइट, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. ये सनी ने मनी के लिए रिक्वेस्ट किया है गाना. गाने का नाम है जी एवरीबडी हर्ट्स बाय सिद्धू मूसेवाला. एंजॉय द सॉन्ग.

0: ਬੇਰੰਗ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਵਿਦਾ।
1: And welcome back. Aate hain agle announcement par. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. Is season mein alert raho. Influenza, flu, COVID-19 aur dusre saans ki bimariyan abhi bhi chal rahi hain. Apni personal hygiene aur ghar parivar ki safai ka khayal rakho. Khansi ya chheenk aaye to tissue se muh aur naak ko dhak lo. Haath ko liquid soap aur pani se kam 20 seconds tak acche se dho lo. अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से सलाह लो। गवर्नमेंट का 2025-26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। जो लोग एलिजिबल हैं उनको फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क वाले लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल केयर होम्स में रहने वाले, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग जो 6 महीने से ऊपर हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर जाइए, www.chp.gov.hk। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। This song is requested by Manjot Gill and the name of the song is Off Road by Khan Benny. Aur ye gana jo request kiya hai is for Amrit and Bachi. Enjoy the song.

एंड वेलकम बैक गाइस, आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। ये हमारा चौथा और आखिरी अनाउंसमेंट है। दिस इज अपील फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। अपने कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते आपको अपना सिविक राइट यूज करना चाहिए। वोटर बनने के लिए अभी रजिस्टर कीजिए। अगर आपकी उम्र 25 सितंबर तक 18 साल या उससे ज्यादा है और आप हांगकांग के परमानेंट रेजिडेंट हैं और यहां रेगुलरली रहते हैं तो आप इलेक्टर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप 2 जून तक अपना एप्लीकेशन इजीली आई एम स्मार्ट ऐप से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरकर ईमेल, पोस्ट या फैक्स से भी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। फॉर्म आई एम स्मार्ट ऐप में vr.gov.hk वेबसाइट पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस में, पब्लिक हाउसिंग एस्टेट्स के मैनेजमेंट ऑफिसेस में और रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस में मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड वोटर हैं तो अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं आई एम स्मार्ट ऐप या vr.gov.hk वेबसाइट से। अपना रेसिडेंशियल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं से अपडेट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए vr.gov.hk वेबसाइट पर जाइए या रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस के हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2891-1001। आप अपने लोकल सपोर्ट सर्विस सेंटर्स में भी जा सकते हैं। अभी एक्शन लीजिए, अपने कम्युनिटी के इलेक्टर बने। ओके, आते हैं जी अगले गाने पर, अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय अमृत गिल। इन्होंने लिखा है, हेलो, कैन यू प्लीज प्ले नॉन स्टॉप बाय खान बनी फॉर बाची एंड A1। सो दिस इज नॉन स्टॉप बाय खान बनी। एंजॉय द सॉन्ग।

एंड वेलकम बैक गाइस, बढ़ते हैं जी टू आवर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग. इट्स आल्सो रिक्वेस्टेड बाय एन एनोनिमस पर्सन एंड इन्होंने लिखा है, दिस इज फॉर बिलाल इन स्टैनली प्रिजन. दिस इज फ्रॉम जेन अनलेस इवन इन सॉन्ग चॉइसेस, सॉरी ब्रो. हाहा, गाने का नाम है जी 295 सिद्धू मूसेवाला. तो ये गाना आपके लिए है, बिलाल इन स्टैनली प्रिजन. Enjoy the song.

0: एंड वेलकम बैक गाइस, आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। ये ब्रार सिंह ने गाना रिक्वेस्ट किया है और गाने का नाम है जी ओही नंबर चलदा बाय सिप्पी गिल एंड इट इज फॉर नुमन खान जुर्दान। ओके सो इन्होंने नाम तो बोला नहीं है किसके लिए डेडिकेट किया, बट इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गाना। सो एंजॉय द सॉन्ग, दिस इज ओही नंबर बाय सिप्पी गिल।
1: वेस्टर्न पे हिंदू, वेस्टर्न पे हिंदू,
2: डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी।

0: वेलकम बैक, आते हैं जी अगले गाने पर. दिस रिक्वेस्ट इज मेड बाय यसीन मोहम्मद एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज क्लाउड 9 बाय चीमा वाई फॉर चीमा अरसलान, पेंडा अतीक एंड माय ब्रदर चीमा जे फ्रॉम स्टैनली एंड पिक्यूक. सो या एंजॉय द सॉन्ग.
1: But he looking like a sucker. What you get up in there, boy?

0: एंड वेलकम बैक गाइस. अगला गाना रिक्वेस्ट किया है शेर यार खान ने. स्विचिंग लेन्स इज द नेम ऑफ द सॉन्ग बाय आर्टिस्ट तेगी पन्नू एंड सुखा. रिक्वेस्टेड फॉर हिज ब्रदर चीमा जे फ्रॉम स्टैनली. एंजॉय द सॉन्ग.
1: This nigga trippin'. But he lookin' like a sucker.
2: Fuck you. What you jumpin' in, boy? Jump up.

And welcome back, guys. अब ये गाना जो लगने वाला है खान भाई ने रिक्वेस्ट किया है. The name of the song is Jail by Deepak Tilo, dedicated to Nomi Jordan. Enjoy the song.

गाने का नाम है जी एनिमी बाय जॉर्डन संधू. द मैसेज इज हे द सॉन्ग सेंड फ्रॉम दिल्ली इंडिया फॉर डेडिकेट एंड डेडिकेटेड टू अमेरिका हांगकांग. सॉन्ग नेम इज एनिमी बाय जॉर्डन संधू फ्रॉम सनी जसवंत अमृत संधू तिहाड़ जेल नंबर 4 दिल्ली. एंजॉय द सॉन्ग.

एंड वेलकम बैक गाइस, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय योगी जट. गाने का नाम है जी पित्तल बाय सिद्धू मूसेवाला. इन एंड इट्स फॉर अमरीका बाली, अमरीका बाई पठान, हैरी, नोमी ताइलो, पंकज, अरुण हरियाणा एंड वडा. सो एंजॉय द सॉन्ग.

0: मिस कर, कब आइएगा? जल्दी आ जाइए, ठीक है? हम आर अड्डा 2 क्लास में चल गए, और कब आइएगा? जल्दी आ जाइए, और बकरीद मुबारक, ठीक है? और अच्छा से रहिएगा उधर, और आइएगा तो फोन करके दिखाइएगा, ठीक है? और खाना ना खा लिए ना, ठीक है? बाय बाय।
1: बोलिए
2: बाबू, ठीक ठाक रहेगा, अब मेरा फिक्र मत कर, हम ठीक है, अल्लाह करेगा ते भी ठीक रहो, जहाँ तक घर को कोई टेंशन मत ले,
1: हम एकदम
2: खुश रहने का कोशिश कर, हम सब बहुत अच्छा है,
3: अब रोइए मत।
4: अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जान? ठीक है ना? हम लोग भी सब ठीक है, समझ नहीं आता क्या बोले, बस आप रूड है, समझ आता है हमको कि हमसे गुस्सा है, कोई बात नहीं, आपको जितना गुस्सा निकालना होगा आप निकाल लीजिएगा करके, बस आप चले आइएगा मेरे पास, हमको कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपका, कुछ नहीं चाहिए हमको, एकदम अच्छा नहीं लगता है आप, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन, बहुत सारा बात करना है, बहुत सारा बात, आप गुस्सा है हमसे समझ नहीं आता है, इतना दिन गुजर गया, बस और कुछ दिन का बात है, आप चले आइए, सब ठीक हो जाएगा, बस यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपके साथ आसानी करना था, दिन रात यही दुआ करते हैं बस, अल्लाह हाफिज़, लव यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है ना? समझ में आता है कि क्या बोले, आप इतना रूड फ़ोन भी करते हैं तो इतना रूड आप बात करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, आप अगर गुस्सा भी हैं तो हम समझ रहे हैं आपका गुस्सा, आप हमको जो समझाने मांग रहे थे, आप जो बोलते थे हमको बाद में समझ में आया, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक अब जिस हाल में रखे उस हाल में अल्लाह का शुक्र गुजार है, बस अपना ध्यान रखिए, हम बस वही सब दिन याद करते हैं, कितना अच्छा से हम लोग रहते थे, दिन में कितना बार हम लोग आई लव यू बोलते थे, कितना बार हक करते थे, अल्लाह पाक फिर से वो सब दिन ला दे, अपना वहाँ ध्यान रखिए, अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, हम भी अपने आप को अब ठीक रखते हैं, खाने पीने की कोशिश करते हैं सही से, क्योंकि अल्लाह पाक अब एक करे हम लोग को तो हम लोग को भी औलाद से नवाज दे, फिर सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कुछ दिन का बात है, अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू, मिस यू सो मच जान।
5: अस्सलाम वालेकुम मुन्ना भाई जान, बोल ले बकरीद मुबारक बाबू, बोल लो तेरा दोस्त जो है हांगकांग से 8 पीस सामान भेज दी से, जो पार्सल था 8 पीस भेज दी से, अम्मी का हाथ में रखवा दिया है, और इधर तो गाय बंद हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 पीस छोटे जानवर हो गया है, ठीक है, चलो दुआ करो, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके लिए दुआ करो, चलो अस्सलाम वालेकुम।
6: All right, it's 7:58 here in Hong Kong, so we finished that about a minute and a half before we go on to the news. And I would just like to say to everyone that keep those MP3 messages coming. And for one of our letter writers here, let's see, we've got 3 letters, one for Anna Luella I'll be reading tonight, and this came while I was away, and from Omar, a letter I'll read tonight, and also from Nixon Camacho, thanks for your short letter, take down this number, Nixon, you've got one number wrong there for our MP3 messages, 852-5703-7148, okay, write that down, if anyone who knows Nixon Camacho, please help him. He had a missed number there. He wrote it as 5703-7146. No, it should be 5703-7148. Okay, keep those coming here. And then, once again, Giovanni Nunes, thanks. Good evening, Brother Bruce. Roy Poole, hi, keeping my one eye on the time. Hi, Brother Bruce, can you say hello to my son, Alan Newcomb? Love and miss you from Mom and Dad and brothers and family. Okay, that's very good, Roy. Thank you. And Joel Mar Santos, hello, Brother Bruce. God bless you for passing on our message to our relatives. You're most welcome. And I'll just slide down here a little bit first to get my dear sisters here. Tatiana Evergreen, good evening, Brother Bruce. How are you? Happy watching and listening to your program in Father John's office. That's fantastic. More power to your program. Okay, we'll be back after about 10 seconds, 5 seconds then. And then Amanda call right after the news. We've got a packed program, not much time. Thanks so much.
7: Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Vince O'Brien.
8: The U.S. is ready to restart attacks on Iran if a deal cannot be reached, Defense Secretary Pete Hegseth said on Saturday, as negotiators from Washington and Tehran worked to bridge major differences, blocking an agreement.